माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौशन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सब बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। गुजरी महला पंजवां।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूँ।

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधर बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभु स्वामी ओत पोत प्रभु साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जम कान न जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नहीं घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्राभक्ष न मिटे नित नित चढ़े सो

एमान मिर्त सुवचिंतं गुर शब्द हारमण मत तत् ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमण चल चित विद प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिड़ंग मती गुरवाक शब्द रतन परमात परमना चूकई जग जन्म व्याद खापं अस्थान हर ने केवलं सतमती नाम तपं इहो जग मोहित व्याप्तं दुख अदक जन्म मरण भज सरण सदगुर उबर है हर नाम हृदय रमण गुरमत निचल मान मान मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंत

दुर्मत व्यापे जिन अंतरम हो गुबारी, संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे सान परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पगमाया थारी, संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। ओ प्रपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल थारी, हर एको सूत।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर स्मृत पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिगे रज साध मोह मिथन दुरंत यस बसना विकार रख धर्म परम विदार मनते उधर हर निरंकार तनाड़ आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुगद मूड़ पटाख श्री तार पय गुणमत तीर जीवन मुक्त जगदीश जापमन तारद प्रतीत जी दया मया सर्वत रमण परमहंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परस।

करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रा मिलया आई, वड़भागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वो करे सही जन सोने, तिन को परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चे शोभा पाई। पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर, कूड़क सत अभवानी, परम फूले नदर ना आवनी, मानमुख अंध अज्ञानी, उपाय किते ना लभनी, कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए, वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

पौड़ी आपे जगत उपायोन कर पूरा थाट आपे सौ आपे वणजारा आपे ही हर हाट आपे सागर।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल, साध संग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े हुमस तुमस कूका पईयां राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया, होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया, पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया, तत ज्ञान लाए ध्यान दृढ़ समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया, परख खजाने पाए से बौड़ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा, विशोहे जंबूर खवे न वंजन गाखड़े, जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच महला पंजवा, जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे, नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पै बिस्मार दे कुदरत तेरिया, सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया, तेरे हथ निदान भावे तिह देह, जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे, अगम अगोचर बेअंत

पौड़ी सूर वीरवरियाम किने ना होड़िए होशतानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी अवधूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िए तै गुण इनके वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िए हाँ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए श्लोक महला पंजवां केलवग सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे

अंतरमाल निर्मल नहीं कीना, बार पेख उदासी, हिरदे कमल कड़ ब्राह्मण चीना, कहे पया सन्यासी, परमे पुली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रगाओ, तार कर खाया पिंड बदाया, खिंता मुंदा माया, ऊम मसान की पसम लगाई, गुरबिन तत् न पाया, काय जपो रे काय तपो रे काय बलो वो पानी, लख चौरासी जे न्यो पाई सो सिमरो निर्वाणी, काय कमंडल कापड़िया रे अड़सड़ काय फिराही, बत लोचन सुने प्राणी कण बिन गहो के पाही, गूजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल बल अवतर अरी बाई गोविंद नाम मत बिसर, रहाओ अंतकाल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, बेसवा जोन वल बल अवतर अंतकाल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल बल अवतर अंतकाल जो मंदिर सिमर ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल बल अवतर अंतकाल नारायण सिमर।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर हस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइए। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

आराम सुख सहज आनंद विरोध सदगी गुण गोपाल नित गाइय पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताइय गय कंठ लाए सह सुखाए।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथ्या संसारी। अराजन क्यों सोया तू नींद परे

चौथा बिन सदगुरु सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमावे बिन सदगुरु सेवे ठवर ना पावही मर जम्मे आवे जावे बिन सदगुरु सेवे फिक्का बोलना नाम ना बसे मन आए नानक बिन सदगुरु सेवे जमपुर बद्दे मारी है मुए काले उठ जावे महला तीजा एक सदगुरु की

आपे चार साल आप गए पांदा, आपे चाटड़े पढ़न को आने, आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे से आने, एक थे पढ़ बुझे सब आपे, एक थे आपे करे ए आने, एक न अंदर मैल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने, जिन्ना आपे गुरमुख देव डियाई ते जन सच्ची दरगह जाने। सलोक मर्दाना पहला कल कलवाली काम माद मनुआ पीवनहार, क्रोध कटोरी मोहे परी पी लावा अहंकार, मजलिस कूड़े लब की पी पी हुए खुवार, करनी लहान सत गुड़ सच सरा कर सार, गुणमंडे कर सील क्यो सर्व मास आहार, गुरमुख पाइये नानका खादे जाए विकार, मर्दाना पहला काया लहान आव मद मजल तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ परी पीला।

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई इते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन गिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है।

हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आव डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हार।

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुवार नानक से बड़ भागी जिन घर नाम ते आया गुर प्रसादी मन नमसाया वढ़ांस महला तीजा होमे नावे नार विरोध है दोना वसे एक ठाए होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब की साध।

तूरे, मन निर्मल कोई संता तूरे, चरण कमल हिरदे उर तारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, वढ़हंस मगल्ला पंजवा, सार संघर अमृत पीजे, ना जू मरे न कबहू चीजे, वड़भागी गुर पूरा पाईए, गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ, रतन जवाहर हर मान कलाला, सेमर सेमर पा पय निहाला, जत कद पेखो साधु सरना, हार गुण गाए निर्मल मन करना, घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रतूठा, वढ़हंस महला पंजवा।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री

मामना साभ्यो पाइगन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे सब कोई मीठा मांग देख खसम पावे सो करे किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे सब उपाय गिने आप आपे नदर करे वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना सब उपाय गे आप आपे सर्व सुमाना सर्वे सुमाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठ एत परम फुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम खाना नाम तेरा है सच्चा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए सुमाना गावन सुरनार सुगड़ सुजाना सुरनार सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेते नाही अहला जन्म गवावे एक मूड़ मुग

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सतगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शाने गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन वसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार सेजन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडपा गो राम। गुरमती मन निज कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे होए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति मन मुख मोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए के एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सचर ते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जन्म वडभागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। इक कामण हितकारी माया मोहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजी है जा सदगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा।

मुक्त गवार मानव जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मानव को सुंदर

सदगुर देख सरसे राम, हर नामो हर नाम दृढ़ाय, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निंद पाई, हम में रोग गया दुख लाता, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सदगुर ते पाई, सुख सदगुर देव मन परसे, हो जीवा सदगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे, मेरा सदगुर पूरा राम, हो मन तन देवा, इस काट श्रीरा राम, हो मन तन काट काट देई, जो सदगुर बचन सुनाए, मेरे मन बैराग पया बैरागी, मेल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुखदाते, देव सदगुर चरण हम तूरा, कोई आन मिलावे, मेरा सदगुर पूरा, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवे, हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वड पागी, जिन गुर चरणी मन लागा, कहो नानक हर आप मिलाए, मिल सदगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, वढ़ांस महला चौथा, हाँ गुरबेन, खरी निमानी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल सुमानी राम, सदगुर मेल हर नाम सुमानी, जप हर हर नाम तिहाया, जिस कारण हौ ढूंढ ढूंढेंदी, सो सज्जन हर कर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया,

ठाकुर माने से प्रधान ने हर से तीरंग राते हर से अघाए सह सुमाए घट कर मैया जाते से ही सज्जन संत से सुविए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर पा डिटा तिन कैसल कुरबाने श्लोक दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सबल जिनम जय कड़ उठा सच तनी संत तिन खनिये वन्या जिन मेरा हर पा डिठा राम जन चाह अगाने हार घर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्य बूठा सुख पए दुख नास परम विनाश तन ते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहित विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिए वन्या जिन कड़ मेरा घर प्रभूटा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से ही कंडया नानक जाने सत साई संतना भारा शंत मिल जजले खटा ना राम संग ज्योति ज्योत मिला ना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपे जानिए ते सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक प्रम पै गुण बिना से मिल जल जले खटाना वढ़हंस महला पंजवा प्रभ करण कान सुमरथा राम रख जगत सगल देखता राम समरथ सरणा जोग स्वामी कृपा ने सुखदाता हाँ कुर्बानी दस तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चिन्ह ना जाए लखया कथन ते अकथा बिनवंत नांग सुनो बिनती प्रभ करण कान समरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम करता राम प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुत

मन इच्छेड़ा फल पाई गे राम, मन इच्छ पाई गे प्रवत आई गे, मिटे जम के त्रस, गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण अस, तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याई है, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा, गुण बेअंत किस कहन न जाई, कोई न सके पहुचा, आप उपाय आप प्रद पाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनहद वाजे, राग बढ़हंस महला पहला, कार पंजवा अलहानिया एक ओंकार, सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तन दे लाया, मोलत पुन्नी पाई परी, जानी एड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया, लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए, काया हस्ती आवे छोड़ा, जादर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया, जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तंदे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना, ज्यो मेहमाना, काहे गर्व की जय, जित सेवे दरगह सुख पाई है, नाम तसे काली जय, आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, जोत पावे समृत सोथिए, हिलड़ा यो संसारो, जल थल मई लड़ाब रहा,

मरण मुनसा सूर्य हक है जे होए मरे परवाणु नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए यो संसारो कीता वेखे साहिब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे धारण धारे जिनकी या सो जाने आपे वेखे आपे बूझे आपे हुकम पछाणे जिन कछ किया सोई जाने ताका रूपया पारो नानक किसनू बाबा रोईए बाजी गए यो संसारो वडहंस महला पहला दखणी सच सरंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारो जिने आपी ने आप साजिया सचड़ा अलाख्या पारो दोए पुर जोड़ विछोड़ियन गुरबिन कोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन अहे निश्चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो अरहाओ तो सिरजी मेदनी दो सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजे बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देजिया आधारो कुदरत तख्त रचाया सच नबेड़ नगारो आवा गमन थिरजिया तू थिर करने हारो जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो उडड़े नाम सारिया बूडड़े क्या तुचारो गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो सदड़े आए तिना जानिया हुसते करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुगबदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुगम सच्चे हंस गया गैनारे सातन छुट्टी मुट्ठी झूठ विदनिया मितगड़ा अंगरड़े बारे सुरतमुई मरमाइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिहे लियो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े खेत प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया तेरी छोड़ी विदन कारे कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं तेरे सच सराहना हो रैसेड़ी ना पतारे गुरमिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागणी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढ़ांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए कड़ कड़ शब्द पछाणो वा

ना जानई अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुवार नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उचरे हर नाम।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीतन आईया सबदन लागो पाओ ओसनु सुख ना।

ब्राह्मण हारा यू मनुआ सदा सुख वसे सहजी करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करामन हारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श प्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तू सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ हाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया। श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद्ध सिद्ध सा मोह नाम न वस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए।

सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई, तन तन सदपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई, तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जेकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई, तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम को साध समधिट दिखाई, तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला। कर ही मुंद वदेश पेर ने चूरे संभाले, मिलद्या टेल

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

तुझगी मन राते अहनस प्रभाते हर सना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द पेद फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर।

नाच माद पिता सुदबंधव नाच कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे चूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो योगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाईगे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लोप हाने, हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, हे दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हर ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया,

प्यारे राखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा। मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अन दिन जागा। महा गंभीर सदा सुखदाता जिसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया ता मिलो देव उपदेशा मां ना कीजे शरण परिजे करे सो भला मनाई है सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाई है पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै।

हमारी ओर सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखे आपाई, यो मन तेरा पाई रखाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हमला खाटिया, हर भगत परे पंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करे गो, जो वाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद पये सुख पाया, संतन कह परसादे, कहो नानक हर सो मन मानिया, हरंगर ते विसमादे। सोरठ महला पंजवां, जेती समगरी दे।

माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना हंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा प्रभ की सारण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी

जो करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़दे मह, पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी, जपंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई। साध संग सदा सो पाई है, हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे, तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी, आनंदन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कड़ा सोहेली, आद अंत मद नानक हो, तो प्रभु वा बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी थारी, संत या बताव होकारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोर

ए पीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलावो, अपनी बेद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ, बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी, जननान कते ना ताव, सोरठ महल्ला पंजवा, जाके सिमरन सब कछ पाईये, विरती काल ना जाई, ते प्रत्याग अवर कतराच्यो, जो समय रहया सुमाई, हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ, सार संभाले नित प्रत पाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे

विलक्ष मनोद आना सुगमान हूँ। खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सर भोयत, जड़ लंगो बिर संसार रघव। है कृपाल पूर्ण अविनाशी, आपे की निसार, पेग पेग नानक बिसानो, नानक नहीं सुमार। सोरठ महल्ला पंजवां, गुरपुरे अपनी कलतारी, साब का उपजी दया, आपे वेल वडाई कीनी, कुदल खेम सा पया। सदगुर पूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म जिस सदा निहाल रखाओ। अंतर बार थान थनंतर, जल कद पेखो सोई, नान गुर पायो वड़ पागी, ते जेवड़ अवर ना कोई। सोरठ महल्ला पंजवां, सुख मंगल कल्याण सहज तोन, प्रभु के चरण निहारिया, रखन हारे रखो बार, सदगुर ताप उतारिया, उबरे सदगुर की शरणाई, या की सेवना बिरती जाई रखाओ। कर में सुख वार पुन सुखा, प्रभ अपने पय दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभु आ कृपाला। सोरठ महल्ला पंजवां, साधु संग पया मन उद्यम, नाम रतन जस गाई, मिड़गी चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण मसाई, सुख पाया सह तुन उबजी, रोगा कान मिटाई रखाओ। क्या गुण तेरे आख वखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना पया सखाई। सोरठ महल्ला पंजवां, गए कलेस रोस अविनाश, प्रभ अपने कृपा थारी, आड़ पैर आराधो स्वामी, पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, राख लहो पाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास रखाओ। जो मांगो सोई सोई पाव, अपने खसम परोसा, को नान गुर पूरा पेट्यो, मिट्यो सगल अंदेसा। सोरठ महल्ला पंजवां, सेमर सेमर गुर सतगुर अपना, अगला दुख मिटाया, ताप रोग गुर बचनी,

जन की लाज रखाई, साध संगत तेसा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, हलत पलत पव दोवे सवारे, हमारा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सबत सिके की है, सोई संसगाई, अपने सेव की आपे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल। अरहाओ अन दिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दाज को कंठ लाए राखे।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब टूंडन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊखा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहद शब्द।

प्रभु जी तू मेर सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरुष विधाता रखाओ। नानक प्रभु अविनाशी, ताकि सेवा बिरथी जासी, अंध करे तेरे दासा, जप पूर्ण हुई आसा। सोरठ महला पंजवां, गुर अपने बलिहारी, जिन पूर्ण पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया, प्रभु अपना सदा ते आया। संतो तिरबन अवर ना कोई, कारण कारण प्रसोई रहाओ। प्रभु अपने वर दीने, सगल जीव सपीने, जन नानक नाम ते आया, ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवां, ताप गवाया गुर पूरे, वाजे अनगर तूरे, सर्व कल्याण प्रकीने, कर कृपा आप दीने, बेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत ससरसे होए, हर हर नाम त्याई रखाओ। जो मंगह सो लेवह, प्रभ अपने संतां देवह, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुपाखिया। सोरठ महला पंजवां, तोई कराए जो तुद पावे, मोए सियाण कछु न आवे, अंबारग तो शरणाई, प्रभ्या पे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रद पालन लागा, करी तेरा कराया रखाओ। जी जन तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तो मारे, जे करावे सो करना, नानक दा तेरी सरना। तोरठ महला पंजवां, हर नाम हृदय परोया, तब काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूर्ण जाके भागा, मिल सा संघर त्याया, आड़ पैर आराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रखाओ। बड़ा पूर्वला अंकर जाग गया, राम नाम मन लग गया, मन तन हर दर्श सुमावे, नानक दास सच्चे गुण गावे। सोरठ महला पंजवां, गुरमल प्रभु चिता।

सुख पुंचो मेरे पाई। चौरठ महला पंजवा, सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे थारे। राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जीओ खुशमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरा।

संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भग सिर पाओ जीव जने अपने प्रताप।

जागृत तो बैरागी सबन विद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंगराता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेतर सोतर।

भगत जिना कै संग पाप गुवावना, जन नानक सद बलिहार बल बल जावना। श्लोक मोहल्ला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मध्यम, सदगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट स कपटो कर जाने, कपटे खपे खपाही। सदगुर का पाणा चित न आवे, अपने सुहाए फिराही। कृपा करे जे अपने ता नांग सद सवाही। मोहल्ला चौथा। मनमुख माया मोह वे आपे, दूजे पाए मनुआ सिर नाहे। अनदन जल रह दिन राती, होमे खपे खपाहे। अंतर लोभ महा गुबारा, तिनके नित न कोई जावे। कोई आप दुखी सो कभू ना पावे, जन्म मरे मर जाहे। नानक बख्श लहे प्रसाचा, जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रापाया, सही बचखण जंत जिनी हर त्याया। अमृत नाम निधान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया। नानक पय पुनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा। गुरमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाये। नामो चित वे नाम पढ़े, नाम रहे लिव लाए। नाम पदार्थ पाया, चिंता गई बलाए। सदगुर मिले नाम उबजे, तिसना भुख सब जाए। नानक नामे रतिया, नामो पल्ले पाए। महला चौथा। सदगुर पुरख जे मारिया, परम परमिया कर छोड़ गया। ओस पिछे वजे फकड़ी, मोह काला आगे पया। ओस अरल बरल मोह निकले, नित झगू सुड़दा मोवा। क्या होवे किसे ही दे कीते, जां तुर किरत ओस दा एहो जेया पया। जिथे ओ जाए तिथे ओ झूठा, कूड़ बोले किसे ना पावे। वेखो भाई वड्याई, हर संतो स्वामी अपने की। जैसा कोई करे तैसा कोई पावे, यो ब्रह्म विचार होवे दर साचे अगों दे। जन नानक आख सुनावे पौड़ी, वो सच्चे बद्दा थे हो। रखवाले गुर दिते पूर्ण होई आस, गुर चरणी मन रते। गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते, गुर अपनी किरपा तार अपने कर लेते। नानक सद बलिहार, जिस गुर के गुण इते। श्लोक महला पहला। ता की रिजाए लिखिया पाए, अब क्या कीजे पांडे। हुक्म हुआ हासिल तदे हुए निबड़िया। पंडे जी कमांदे महला दूजा, नक नथ खसम हथ। किरत थके दे जहां दाने तां खाने, नानका सच हे पौड़ी। सबे गल्ला आप थाड़ बहाले ऊन, आपे रचन रचाए आपे ही काले ऊन। आपे जंत उपाए आप प्रतपाले ऊन, दस रखे कंठ लाए नदर निहाले ऊन। नानक भगतां सदा आनंद, पाओ दूजा जा लेऊन। श्लोक महला तीजा। ए मन हर जी प्याए तू, एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वड्याईया, दे ना पछोताए। हो हर के सद बलिहारण, जित सेवे सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रहे, हो में शब्द जलाए। महला तीजा। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का मां प्यो आप है आपे सार करे। नानक नाम ध्यान ते निज करवास गए, जुग जुग शोभा होए पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करते, मैं तुझ बिन अवर न कोई। तुझे आपे सिट सिरजिया आपे फुन गोई, ताबे को शब्द वर्तदा जो करे सोई। वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो तन तन तन गुरसोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला एक ओंकार। सदगुर प्रसाद बुत पूज पूज, हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई। उले जारे उले गाडे, तेरी गद दुहू ना पाई। मान रे संसार अंध गहेरा, चौध पसरे हुए जम जेवर आ रहा। कवत पड़े पड़ कवता मुए, कपड़ के दारे जाई। जटा थार तार जोगी मुए, तेरी गत इने ना पाई। दर्ब संत संजराजे मुए, गड़ले कंचन पारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम ना बिन सबे बगूते, देखो निरख शरीरा। हर के ना बिन किन गत पाई, है उपदेश कबीरा। जब जरगे तब हुए।

फूलिया जब दस मास उर्द मुखरेता सोधन कैसे फूलिया रहा जो मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लिहो लिहो करिए भूत रहन क्यों दिया ज्योरी लाओ बरी नार संग पई आग गए सजन सुहेला मारकट लाओ सब लोग कुटम पयो आगे हंस अकेला कहे तो कबीर सुनो रे पानी परे कागरस बुआ झूठी माया आप बंधाया जो नलनी प्रमसुआ वेद पुराण सबे मत सुन कर करी कर्म की आसा काल ग्रह सब लोग सियाने उड़ पंडित पै चले निरासा मान रे सरयो ना एक एक काजा पजो ना रग पग राजा रखाओ बाण खण जाए जोग तब कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी सब दी मोनी जमके पटे लिखाया भगत नार दी हृदय न आई काश कुश तन दीना राग राग नी डिंब होए बैठा।

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस जाखे, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइये पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चितन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए, पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए, फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरिया होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा।

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाव शेख खट बोले मुख आगर।

पंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लेओ अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो, हराओ अगर कुटुंब सागर संसार।

करे निर्बन जानत दूर तुमे प्रभनेर उद ताक उद ते उद पिख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवां नाम गुरदी हो अपने जाके मस्तक करमा नाम दिरड़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्मा जन को नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पद जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम धन जिस जन के पाले सोई पूरा साहा नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवां नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे।

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हृदय चरण सब सगुर को नानक बंध्यो पाल। तनाशरी महला पंजवां अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्ब सुख होगस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कद तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राजमाल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवन दे पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओ भवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिरस न कतहु जात सगुर पूरे कीनी दात हर घर नाम दियो।

राम रहाव सिमर स्वामी प्रव्यपन निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मेहमान ना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर

देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत शार करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक।

नेड़े तृष्णा अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

दीन दयाल सदा दुख भंजन तासु मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगतना जानो लोभ मोह माया ममता भोन जे कड़माए पछानो अरहाव पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लोस मानो अर्घ सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक हे बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसार चूक।

जाते साज स्वरूप तनासरी महला पहला। सहज मिले मिले या परवान ना तस मरण न आवन जान। ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा ते अवर न कोय। गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर फेटे मर आइये।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करे प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे ना।

कदे ना विसारी अन दिन सुमारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता इहो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा नेहो पूरे सतगुर सत्संगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो आन दिन रहे लिवलाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बैरागी पलत पलत सोभा जग अंतर आराम नाम ले लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभु करे सो भावे सत्संगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हो मेर होया मेरी मेरी करत विखावे जो प्रव दे चेत नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को सा

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कैरवदास एक बेनती हरस्यो, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, ताजते नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे कानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कह रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, पना

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो आराम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे जो खोजे सो पावे की पाप परमय परम तत्व है सदगुरु होए लखावे तन्ना।

हमरा खुशी करे नित जियो, परिया शत नीका अनाज मंगो सत सीका, गौ पैस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी। जय

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम।

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा, जय तसरी

प्यासी दिन सरात चितवो अनदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया इस मोहन लाल प्यारे ओं फिरो खो जंतिया ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना तीरीजे प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात जिवे तसंतिया जन नान गुर पूरा पाय सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रे हब्बे सगिया मूह कई ना जइया यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा किन्नी मैंडा लाल रीझाय हौत आगे मन डेइया नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया यार वे तेरे आपन फाणा किश नी सी छंदा यार वे तेरा व्या लालन मूह तद संदा लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाणे बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नान सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई जैत सरी महला पंजवा घर दूजा शंत एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सलोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कसन न जाए अकत नांग प्रसरणागति राखन को समरथ शंत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया एते करो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नान दया तारो ताड़ पव जल फेरिया श्लोक निरतन पवे असंख गुण

ना इड़तना रूपहीन किज साक ना सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचत मूड अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप उराया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी। महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

तलोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया।

अवर न कहू तानी। ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा अमर हर जने नहीं निकटानी। निरभ हो रहे ले एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए क्या को कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी। टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे।

आत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन अरहाओ जो मांगे सोई सोई पावे शिव हर के चरण रसायन जन्म मरण दुहू ते छूटे भवजल जगत तरायन खोजत खोजत तत विचारियो दास गोविंद परायण अवनासी खेम चाह जे नानक सदा सिमर नारायण।

इन्नी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही समाले तिन से सोग संताप। आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ। नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे माया रच बंद हारे। चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचो जिद पूग तसायो। अमृत नाम तुसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया। टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ। वड़े पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताब्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जाद घर गुनिया मां आनंद कीर्तन घर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब कित के गृह में

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो। अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष उपावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको पुर सतगुरु दान देवा।

जप मन राम नाम निस्तारा कोट कोटंतर के पाप सब खोवे हर पवजिल पार उतारा रखाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निगट बस कछ नजर न आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे सहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे तो साहु सचा बणजारा पैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा सो ऐसा अगर

तन महल न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला करमानिए हिकमत हुक्म चुकाइए।

बाद तब आए हो मुख समाहु हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सच अखेल सब हरतनी साल आए हो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी अरहाव पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर घर बनी विच वर्तै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने वाल।

पर चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औध विहात है, फूटे कर्जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, अजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रहाओ, मात पिता सुत बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कयो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रह तन राश्यो आत्मनिहो लगायो, काल फास जब गल परी

कीन, तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा, अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी, हल्ले यारा खुशखबरी, बाल बल जाओ हों बल बल जाओ, नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ, कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे।

दुख विसारसी सहसा मूले नाहे तर पर तारसी तिना मिलिया गुर आए जिन को लिखिया अमृत हर का नाव देवै दिखिया चल है सतगुर पाए पवे ना पीखिया जा को मैल हजूर दूजे निवे किस तर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस छुट्टे ताके बोल साहेब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मते कोए कहे उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए तू ही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत पावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ए द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जेहे कर्म कुमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे सण नीसा

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजों सिंगी वाजे तौ निरभौ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग

ढूंढ ढूंढाई, सतसंगत मिल हरस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई, सूफी महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ, हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को राहोय, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नजर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सूफी महला चौथा जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लोभाई, अरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे, सूफी महला चौथा तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भू सब ले जाए, अरहाओ अरविदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अनदिन परसे, जे कृपा करे हर राय, सूफी महला चौथा तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखिली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सूफी महला चौथा जिथे हर आरा दिए, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की भगता को मिली वड़े आई, हर तन निरपो सदा सदा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुध सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, भौर भौर लपट्यो जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार जस सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे साथ संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम

न जाए। सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिर दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

सामग्री सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है अरूप तेरा दरसारा। हौ कुरबाणी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा, सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहार, राग सूही महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए, जिसनू होए दयाला साई भगत जो तुद भावे। तू

सेवक कौ पौ किशनाही, जम नहीं आवे नेरे अरहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्सना मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लय सद है, ज्ञान त्यान कछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखनहारे, जित तू लावे, ते तम लागे, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवे अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवतियां इउ मरिए, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रभु स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीकर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो मैं जाई ता कंत समाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लिहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो विणनावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़िया।

दूर है, जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या भरपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जोग जोग प्रीतम तैसे, बाबा लगन गणाए, हंग पी वन्या, सौरे बलराम जियो, साहु घुमर जाए।

मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बार।

वो सांबर अंगाना पूड़ी डेख पुल्लो आड लहे नाम उल्लो गोविंद नाम मजीठा पी भय लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या होए मगर थी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना नेचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गए रही है यो मन दीजे संकन कीजे गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण।

हब वैसी गर्भ गुमानो, नेचल हब जाना मिथिया माना, संत प्रभु होए दासा, जीवत मरिगे पौजल तरिए, जे थी वे कर्म लिख आसा, गुर से वीजे अमृत पीजे, जिस लावे सहज त्यानो, नानक शरण पया घर द्वार, हाउ बल बल सद कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रत्याया, जिन प्रत्याया तिन सुख पाया, वड़भागी दर्शन पाईए, थियो निमाना सद कुरबाना, सगला आप मिटाइए, ओ तन पाग सुद्धा, जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पै आप वेचाया, नानक दीन शरण सुख सागर, राग लाज अपनाया, सूगी महला पंजवा, हार चरण कमल की टेक, सदगुर दित्ती तुस कै बलराम जियो, हर अमृत परे पंडार, सब किस गै कार, तिस कै बलराम जियो, बाबल मेरा वर्ष मरता, करण कारण प्रभारा, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, औजल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तद कर कर जीवा, नानक नाम महारस।

कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

और गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पो भागा हर भेटिया एक।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

तो प्रभ अपना सदा ते आईए, सोवत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल तल मही जल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर न कोई, मेरा कर बनया बनताल बनया, प्र परसे हर राया राम, मेरा मन सोया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइया, करी नदर स्वामी सुखे गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिया।

के अचर जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मांस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सू विगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

तू दयाल दया पद दाता, क्या ए जंत विचारे मुक्त बंसल तुझते होए, ऐसा आग वखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त, जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले, तेन की गहन गद कही ना जाई, सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कही है, ना उरवार न पारे, जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग वेज मस्तक काले मार बिदारे, बिलावल मोहल्ला तीज अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए, तेते दूजा नाही कोए, तेदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ता को जाने दुबदा जाए रहाओ, आप सराप तसवट्टी लाए, आपे परखे आप

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां चौक दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पाभो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेरी ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

मुए अनाथ तुमरी सरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रगाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण

आओ नित राम के ए अवखद जोग, आए बसो कर देशम है ए पले संजोग, नानक प्रसो प्रसन्न पए ले गए ब्योग। बिलावल मोहल्ला पंजवां, काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊठ सुधारे शदरपत संतन कै ख्याल रखाओ, अहंग बुद्ध को बिनसना ए तुरकी टाल, बोजूनी जन्म मरे बिख्या बिकराल, सत बचन साधु कह निध जपे गोपाल, सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सहज समाध आनंद सुख

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रखाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बासना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो

संतन पगराल उगत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल प्राम पै राखो मोहते कट हो जमजाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल बिलावल महला पंजवा कीता लोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे परताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रघाव खोजत खोजत खोजया नामे बिन पूर जीवन सुख सब साध संग प्रामन सापूर जित जित लाभो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली तब के तुम ते मंगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए बिलावल महला पंजवा साध संगत कहे बास बै कलम सब नसना प्रभ से तीरंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना नाम कैद गोविंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ हर अचागत त्रापया मान रस लय हसना बुध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना शीतल सांत संतोख होए सा बूझी तृष्णा दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारी राख्या पय प्रसना नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना बिलावल मुहला पंजवा पानी पखा पीस दास कह तब होवे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मैं जाल संत जना का शोरा ते चरणी लाग माया तारी छद्रपात तिन छोड़ो त्याग रखाओ संतन का दाना रूखा तो सर्वनिधान गृह सागत क्षति प्रकार ते बिहु समान भगत जना का लूगरा ओड नगन न होई सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई सागत स्यो मुख जोरे अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे एक पूते छूटे साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीस धर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ ए निसद पावो संत जना की रेण का लै माथे लावो रघाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनु बुलावो पा मरोवा आप त्याग संत संग समाओ सास सास न विसरे अन कथे न तहावो सबल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटाओ सत संतोख दया धर्म सीगार बनावो सबल सुहागण नानका अपने प्रापाओ बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जे जन हुआ साध संग तिस पेटे हर राया ए प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रघाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभु सब करे कराया पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मद फूलो मान उख जान माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया बिलावल महला पंजवा माटी तेजन साजया कर दुर्लभ देहे अनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टेहे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एह प्राप तज रचे जे आन स्यों सो रलिगे खे हे रघाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे
ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇਹ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਆਸ ਸਭ ਉਪਰ ਸਿਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਜਨਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸਰਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਰਖਾਓ ਆਪ ਰੱਖੇ ਆਪ ਦੇਵਸੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਕਰਨਹਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੁਖ ਖਸਮ ਰਜਾਈ ਚਿੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਾਜ ਜਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਨੈ ਬਿਰਸੇ ਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ

अंध कुब में गलत थे ताडे देखा थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रताप पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवाबो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभते पाओ दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लाव वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत।

रोग रगाव औगद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हित, फिर दुख ना जापे, हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई, केलव उतरे शुद्ध होए, साधु सरनाई, सोनत जपत हर नाम जस, ताकि दूर बिलाई, महामंत्र नानक कथे, हर के गुण गाई, बलावल महला पंजवां, पए ते उपजे भगत प्राभ, अंतर हुए शांत, नाम जपत गोविंद का, बिन से परम प्रांत, गुरपुरा जिसे फेटिया, ताके सुख परवेश।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रतेरिया प्रभ की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सभे करे सच थान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग, रखाव गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कैवारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अवर उपास त्यागया दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन पया गुर पूरा आराध्या।

आवई गुर सिख प्यारे रहाओ, करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रसरणागति।

को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बिलावल मोहल्ला पंजवां।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखिठ गौरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड़ पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीसै इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक उत्तर मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिखारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आवरते स्वामी कार्ज रास किया गुरदेव रखाओ आद मद प्रपंत स्वामी अपना थाट बनायो आप अपने सेव की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक सरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेख्यो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण, बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुमरो, ओड़ अगा तेरो नाम हरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अब महान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुद अजान अज्ञानी रखे तार दए, तो नानक

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावल मोहल्ला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरनावे चरनावे उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटिए रिख ते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओहकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जब ही राम बखानो नारद कैत सुंद त्रू बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तो मानो बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे। रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफलते मानो जो प्रजस बसरावे।

पुराण पुकारे, धर्म करो खट कर्म दरड़ैया, मनमु पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया, नाम जपो नामे गल पावो, सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया, होमे जाय तन निर्मल होवे, गुरमुख परचे परम पद पैया, इहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जित लावे से कर्म कमैया, नानक जंत जाए वाजे, जित फावे तित राहे चलैया। बिलावल मोहल्ला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हौ बाल बाल सदगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरे प्राण मसाए, सदगुर परस हर नाम समैया, जन कीटे हर नाम टकैया, सदगुर की तर लागा जाव, गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ, यो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मथ मथ तत कढ़ैया, लाल जवे हर नाम परगासिया, पांडे पाओ पवे तिद अय्या, दासन दास दास होई रहिए, योजन राम भगत निज पैया, मन बुध अर्प थरो गुर आगे, गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया, मन मुख माया मोहे आपे, यो मंत्रसना जल तित खैया, गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया, यो मन नाचे सदगुर आगे, अनगल शब्द तुन तूर बजैया, हर उस्त करे दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर की रंग रता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर ताल चुए अत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लैया, मन हर कर्म करे अभमानी, जो बालक बालू कर उसरैया, आवे लहर सुमंद सागर की, खिन मह पिन पिन टह पैया, हर सर सागर हर है आपे, यो जग है सब खेल खेलैया, ज्यो जल तरंग जल जले समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मोहल्ला चौथा, सतगुर परचे मन मुंदरा पाई, गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया, अमर पिंड पै साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया, मेरे मन साध संगत मिल रहैया, कृपा करो मसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया, रखाओ तजे ग्रस्त पया बनवासी, एक खिन मनुआ टिके ना टकैया, धावत ताए तदे कर आवे, हर घर साधु शरण पवैया, तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करे नहीं बूझे, गुर कै शब्द नाराज सुख लैया, उबजी तर्क दिगंबर हुआ, मन दह दिस चल चल गमन करैया, पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साथ दया कर लैया।

आनंद है जे चले सतगुर पाए संगति बै पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हर आप तो भगता का मित हर सब कोई हर के वस भगता के आनंद कर हर भगता का मेली सरबत सौ निस्सल जन टंग तार हर सबना का है खसम तो पद जन चित कर अपड़ कोई न सके साब चख जग पावे चाड़। सलोक मोहल्ला तीजा ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चले सतगुर पाए जिनके हिरदे हर वसे होमे रोग गवाए गुण रवे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए ए जुग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए नानक जिन को नदर करे हर सच्चा ते राम रहे लिवलाए। मोहल्ला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ होमे रोग कमावना अद दीर्घ भो स्वाओ मन हठ कर्म कमावने फिर जो नी पाए गुरमुख जन्म सबल है जिसनु आपे लए मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पले पाए पौड़ी सब डियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईये जे वस्त मंगिये साई पाईये जे नाम चित लाईये गुज गल जी की चै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाईये गुरपूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाइए जिस पूर्व हो वेल गया सो हर गुण गाइए। सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रा मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सबल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है तब तृष्णा भुख गवाए हर अस पी संतोख होआ सच वसिया मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैद पसरिया गुर के सहे सुपाए नानक जिन अंदर सच है ते जन छपे ना किसे देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते घर पाईए जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची पगध दे होमे मार मलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सगुर विच नावे की वड्डी वड्याई हर करते आ वधाई सेवक सिख सा वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हिरदे पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चकमाई या सच्चे स्यों बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई साब चाख चक मरे लोकाई। सलोक महला तीजा त्रिग ए आसा दूजे पाप की जो मुहे माया चित लाए हर सुख पल रत्या गया नाम सार दुख पाए मान मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध ना हो वनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तेस सतगुर मिले तू हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए जन नानक तिन बल जाए। महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन होया संसार सब को जमके चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा तो उबर है जे बगसे करतार नानक गुरप्रसादी ऊ मन तां तर जां छोड़े अंग।

मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बलावल, नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूझे, हार हार रस लपटियो, हमारे कुल कौने राम कहो। जब की माला लई निपुते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, यो मुंडिया क्यो नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरियो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरियो बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर साजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

गुण गायले, मन समझ छोड़ आवायले, अपने रहन को ठौर ना पावे, ताए पर के जाए ले रखाव, जो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंब आयले, जो पंखी एकत्र होए फिर बिशरे, फिर संगत हर घर त्याए ले, जैसे मीन रसन साध बिनसियो, ओ मूठो मूड लुभाए ले, तू हुआ पंच वास वैरी कै, टूटे पर सरनाए ले।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए उत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मखला पंजवा जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है।

राम रतन तस्से मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

मन कठोर अजूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद गोंड ना यो मानस ना यो देव ना यो जति कहावे सेव ना यो योगी ना अवधूता ना समाय न काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंतन को उपाई रखाओ ना यो गिरही ना उदासी ना यो राज ना पीख मगासी ना इस पिंड न रग तू राती ना यो ब्राह्मण ना यो घाती ना यो तपा कहा वे सेख ना यो जीवे न मरता देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे तो ही पद खोवे गुर प्रसाद में डग रो पाया जीव मरन दो मिटवाया कहो कबीर यो राम की अंश जस कागद पर मिट

बूंद में सागर ठवन बुझे बिद जाने, ओत खुश चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीध बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकत कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई।

मैं मान कलाला, तुम देव ते संक न मानो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर

अगली कह खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सधाई, परम हो के बांधे बंद, सुबन पया पगलाए अंध, यो तो रजन रचिया करतार, आवत जावत हुगम अपार, न को मुआ न मरने योग, न बिन से अबनासी होग, जो यो जानो तो यो नाहे, जान नगारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया। राम करी मोहल्ला पंजवा, जब गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है, फिर ना खाई महाकाल रखाओ। और जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग सा संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे यो

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ किरपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिनासव चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सा माया मूठ परानी रहाओ तीर्थ नाए न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाएगे आपे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुरग्यान अनक रूप अरंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रघाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्त

ना ही कोय, तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रत्ये रो नाओ, एक का शरण गही मन मेरे।

सुध होए बड़ियाई, अंत की बेला लय छिडाई, राम के गुण गाव हलत पलत होए दोवे सुहेले, अचरज पुरख तिहाओ रहाओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसे सगल संताप, बैरी सब होवे मीत, निर्मल तेरा होवे चीत, सब ते उत्तम यो कर्म, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा होए उधार, जन्म जन्म का उतरे पार, पूर्ण तेरी होवे आस, जम की कटिए तेरी फास, गुर का उपदेश सुनीजे, नानक सुख सहज समीजे,

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माहे करण हार कहो किश अज जनाहे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमरे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेअपिया तोहे उदम करे गाडर ज्यो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सास समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाव जाके राम बसे मन माही तुझन दुत्तर पेखत नाही सगले काशवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मोख उजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कह आड़ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठग बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखिया।

पावे सो थीया, सदा सदा हर की शरणाई, ब्रह्मन नाही आन बिया, रहाओ पुत कलत्र लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया, विखे ठकौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया, पूर्व कमाने छुडे नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, तृष्णा बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजिया संदूखन, दे बिनासी महा खया, जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया, राम कली मुहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन तीर्था ना जाई रहाओ, दर्शन पेहत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान, निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान, एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास, दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, ओन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सार्यो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका इहो तान तान सो पर लेवे, अंतर से साधु पया, अंतकाल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देव कुटाम्ब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाखया राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुग्ध पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह सुमाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृढ़ समय सार,

एक मैं सर्व, सर्व मैं एका, ए सर्व गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, हो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासिया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली महला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ ममता मार, ओ मैं सुख तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जो तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पांच तत् मिल अहर्ष दीव, निर्मल जो त्यपारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीव तमुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्ण महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदू, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदू, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदू, जो जुत विचारी, माया मोह भवज लख अवधु, सब तरह कुलतारी, सब सूरज उचारे औदू, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदू, निरसे शब्द विचारी, आपे बगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली महला तीजा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंसा कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीन पवन जिन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिमर है लिवलाए रहाओ, ससंतोख पद कर चोली जोगी, अमृत ना पुगत पाई, क्या कागर डंडा जोगी, सिंगी सुरत बजाई, मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी, ता तेरी कल्पना जाई, काया नगरी मैं मंगन चढ़े जोगी, ता ना पल्ले पाई, इत किंगरी ध्यान लागे जोगी, ना सच पल्ले पाई, इत किंगरी साधन आवे जोगी, अवमान ना विचों जाई, पाओ पाओ दोहे पत लाए जोगी, यो शरीर का डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे, इन वेद तृष्णा खंडी, हुकम बूझे तो जोगी कहिए, एक स्यो चित लाए, सहसा टूटे निर्मल होवे, जो जुत इव पाए, नदरी आमदा सब कुछ बिनसे, हर से तीच लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागे, ता एसो जी पाए, यो जोग ना होवे जोगी, जे कुटम छोड़ पर पवन करे, गृह शरीर में हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्राप लह, यो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष नाम आया, अनेक जतन पे करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनु मन नमसाए, गुरमुख होवे सो ही बूझे, जोग जुत सो पाए, जोगे का मार्ग विखम है जोगी, जिसनु नदर करे सो पाए, अंतर बार एको वेखे, विचो परम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजे जोगी, सा किंगरी वजाए, कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साचे रहे समाए, राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता, सगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे, काम क्रोध विचों जाई, आव छोड़ ना मिलन लागी, ममता सब जलाई, जिते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सकाई, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जे नरचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सिंह लमलाई, सत संगत मैं नाम निर्मोल, वडे भाग पाया जाई, परम ना भूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई, बिन नावे सा भूली फिर दी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुत गवाई हंडे, पाखंड जोग ना पाई, शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे, नाम से मन आई,
ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਰਬ ਰਖੈ ਸੰਤੋ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈ ਨਾ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ਬਿਨਾਵੇ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹਿਸ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਗੁਟੀ ਛੂਟੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣੇ ਤਿਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕਿਸ ਪਾਈ ਭਵਜਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਸੋਗਤ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸਚ ਸਮਾਈ ਤਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮ ਨਵੰਗ ਨਿਧ ਪਾਈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨਸ ਉਸਤ ਕਰਾਈ ਲੋਇਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚਿੱਤ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਹਾਂ ਗੁਰਸਾਰਾਈ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵੋ ਗਤ ਪਦ ਪਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਸੰਤੋ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਰਖਾਓ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਿਲਾ ਸੰਤੋ ਕਿਹੋ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ ਸਭ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ।

गत मित तिनही पाई, यो मनुआ सुन समाध लगावे, जो तीजो तमलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत मेलाई, गुरमंग गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, ताची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिव लाई, पए पंजन अद पाप नखंजन, मेरा प्रभु अंत सखाई, सब कुछ आपे आप वरत, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील आत अभमानी, मिल शब्दे मेल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम से आकट अंतर, करते आप सवारी रघाव, पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेद करे फिर अभमानी, दिन जुए बाजी गारी, एक अंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उरतारी, अंदन राते सहजे माते, है देखो मैं मारी, भय बिन भगत न होई कभी, भय पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता, आपे बख्श पंडारी, इस क्या गुणा का अंत न पाया, हौ गामा शब्द विचारी, हर जीव जपी हर जीव सालाही, विचो आप निवारी, ना पदार्थ गुर ते पाया, अखुट सते पंडारी, अपने आप भगतां नूं आपे तुठा, अपनी कृपा कर कलधारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गामन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश वै तुसका, आखण बिखम बिचारी, शब्द लगे सही जन निस्तरे, भोजल पार उतारी, बिन घर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सो ही पाया, मिर हार शब्द सवारी, ताया कंचन शब्द राती, साचे नाए प्यारी, ताया अमृत रही पर पूरे, पाएगे शब्द विचारी, जो प्रभ खोजे सही पावे, और फूट मुए अंकारी, बादी बिन से चेप सेवे, गुर के हेत प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हमें तिस नाम मारी, सगुर दाता तने पिछाता, जिसनु कृपा तुम्हारी, सतगुर ना सेव है माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय, जाए मिल गए राम मुरारी, अनदिन जाग तरह दिन राती, आपने प्रेपीत प्यारी, तन मनवारी वार कुमाई, अपने गुर बिट्टो बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आप जगाए सही जागे, गुर कह शब्द विचारी, नानक सही मुए जे नाम ना चेते, फल जीवे विचारी, राम करी महला तीजा, नाम खजाना गुर ते पाया, तृप्त रहे आगाई, संतो गुरमुख मुक्त गल पाई, एक नाम से आकट अंतर, पूरे की वड्याई रघाव, आपे करता आपे पुहता, देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो करया, अवर न करना जाई, आपे साजे सिर चुपाए, सिर सिर तंदे लाई, इस सिरे भो तां सुख पाव, सतगुर मेल मलाई, अपना आप आप उपाय, अलख न रखना जाई, आपे मार जी वाले आपे, जिसनु तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, छेबड़ पागी जिनी एक को जाता, सत्य रहे समाई, आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख पाए अंतर, आपे परम फुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साल आया, सगुर बूझ बुझाई, एक ना ना वो आप भुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा साला है हो संतो, जिदी वड्डी वड्याई, जिसमें अवर न कोई राजा, करत पावस बंत मनाई, न्याओ तसे का है सा साचा, विरले हु मनाई, इसनु प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बंत बनाई, सगुर पेटे सोजन सीजे, जिस हृदय नाम साई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्मात, मेरा प्रभ रविया सर्वथाई, राम कली महला पंजवां, अष्टपदियां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, किन्ही किया प्रवृत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हार हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे, आ ना जा ना वेसा, रहाओ किन्ही ग्रियो तय बणखण पाया, किन्ही मोन अवधूष सदाया, होई कहतो आनन पहोती, मोहे दीन हर हर ओढ़ लीती, किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पौन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कया मैं कुले वड्याई, किन्ही कया बाबो पाई, कोई कह मैं तरे पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई,

हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बो चेट कलाए किन्हीं पीघ बो थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बो खेवा मोए दीन हर हर हर सेवा कोई चतर कहावे पंडित को खट कर्म सहस्यो मंडत कोई करे आचार सुपरणी मोए दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोधे बिन नावे ओ मन ना प्रबोधे कहो नानक जो साह संग पाया बूझी तिसना महा सीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी पे जिंतु करया माटी काले दिहोरा करया उगद जोत ले सुरत परीखया माद गर्भ में जिंतु राखया राखन हार समार जना सगले छोड़ बीचार मना रहाव जिन दिए तुद बाव महतारी जिन दिए प्राद पुतहारी

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर घर त्याय मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर घर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरणा ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछानई।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाणा, तब इश पुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एक तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

काटन पय हरण तुसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसा सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संतन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो ने दृष्ट आवे मर्त हावे महागार्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठ जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नवनिध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नए सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ई पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सां

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गोरस गीत बादनी पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक बिछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृष्ट सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठ गौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एके का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कसे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द सात लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीस्यों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तवार मानमुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा ना पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिह दोए आद होए ता मुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एको सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कड़ताप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

वीर पय बैराए वीर चले कर अपने बहन बिरेजल जाए बाबल कहे कर बेटड़ी बाली बाले नेहे जे लोड़े वर कामणी सगुर सेवै तेहे बिरलो ज्ञानी बूझणो सगुर साज मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तय दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निरकरवासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ पजे हाय उसारे उसरे टाहे सर पर सुख पी पर पुख समर्थ वे प्रवाहे परम पुलाने पए देवाने विण भागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रा पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बौड़ ना पछो ताइए पब्बे भाले गुरमुख बूझे तनज करवासा पाईए पब्बे भौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरीए गुरप्रसादी या पोचीने जीवत्या इव मरिए माया माया कर मोए माया किसे ना साथ हंस चले उड़ डुमणो माया पूली आथ मन झूठा जमजोया अब गुण चले नाल मन में मान उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी कर मोए बिन नावे दुख पाल गढ़ मंदिर महिला कहा जो बाजी दीबान नांग सच्चे नाम वेण झूठा आमन जान आपे चतर स्वरूप है आपे जान सुजान जो आवे से जाए फोन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उताहे से जन उबरे जिन हर पाया धंधा मुआ विगोती माया जो दिसे सो चालसी इसको उम्मीद करे ओ जियो समपो अपना तन मन आगे देओ अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट गुणकी मारी होमोई सब धरती मन चोट राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकीर।

न आए। वन त्रिन टूणत फिर रही, मन में करो विचार, ला रतन बहुमान की प्रगुर हर भंडार, ऊत मोहमा प्र मिले एक मन एक पाए, नानक प्रीतम रस मिले लहा ले प्रथाए, रचना राज जिन रची जिन श्रेया आकार, गुरमुख बेअंत ते आई गए अंत न पारा वार, अड़ाड़े रूड़ा हर जीव सोई, तिस बिना राजा अवर न कोई, अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वसे मन माहे, गुर प्रसाद दीघर पाई गए मत को परम पुलाहे, सो सौ साचा जिस हर तनरास, गुरम पूरा तेस सबास, रूड़ी बाणी घर पाया गुर सब्जी विचार, आप गया जो कटिया हर वर पाया नार, सोईना रूपा संची है तान काचा विगशार, सौ सदाए संज तान दुबदा हुए कुवार, सत्यारी सच संचया ताचो नाम अमोल, हर निर्मायल उजलो पस साची सच बोल, साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस, साचो ठाकुर मानवस हो बलिहारी तिस, माया ममता मोहनी जिन कीती सुजान, बिखिया अमृत एक है बुझे पुरख सुजान, खिमा बिहूने खब गए खून लख असंख, गणतन आवे क्यों गणी खाप खाप मोए बसंख, कदम पछाणे अपना फूले बंद न पाए, तद मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर, मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर, होमे खपे खपाए सी बीजो वस विकार, जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार, सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सुने चो होय, संपे को ईश्वर त्याई है संपे पुरब लिखे की पाई है, संपे कारण चाकर चोर संपे साधन चाले होर, बिन साचे नी दर गए मान हर पीवे छुट्टे निदान, हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान, हो करती मैं मोई सद रवे मन ज्ञान, हार डोर कंकन कणे तरथा की सीगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार, नानक गुरमुख पाई गए हर सो प्रीत प्यार, हर बेन किन सुख पाया देखो मन विचार, हर पढ़ना हर बुझना हर सो रखो प्यार, हर जपी हर त्याईये हर का नाम आधार, लेख न मिटी हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार, करते खत वडियाईया बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकीये ज्यो भावी त्यो सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख फूले पचमुए उबरे गुर विचार, जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहे आ जाए, बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदे दिता दिखाए, पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहे सुपाए, विद्या सो देता तलख राम नाम लिव लाए, मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए, मूर शब्द न चीनई सूझ बूझ न काए, पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे, नाम समालो नाम संग्रहो ला जग में ले, सची पट्टी सच मान पढ़ गए शब्द सोसार, नांग सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गल हार, राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, इस आगे रहे रास हमारी साचा अपर अपारो, मस्तक कार तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ, क्या पविये सच सूचा होए साध सब मुक्त न कोई रखाओ, कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुवाओ, साज को अरदास हमारी हाँ संत जना बल जाओ, कहे बैसो कहे रहिए बाले कहे आभो कहे जाहो, नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो, कड़ कड़ बैस निरंतर रहिए क्या ले सतगुर पाए, सहजे आय हुकम सदाए नानक सदार जाए, आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए, गुरमुख बूझे आप शाणे सच्चे सच सुमाए, दुनिया सागर दुत्र कहिए क्यों कर पाईगे पारो, चरपड़ बोले औदू नानक देव सच्चा बिचारो, आपे आखे आपे समझे

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा।

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुट्टे, जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनु बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदिन गुण गावे सुख सहजे, बिग पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कवावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझे बिचारा, सब कुछ तेरा खेल है, सच सृजनहारा, जिस पावे तिस बख्श लहे, सच शब्द समाई।

परमे पूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए, इसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पर कर भोजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन, वे सच्चा असराओ कर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाओ तब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा, बै सच्चा करे न्याओ तब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मनमुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विच्चे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बक्स मिलाई, वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो सह रत अपने तेन तन लोभ रत न होए, पय पय तन खीन होए लोभ रत विचो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत पंडार, परम गया ता जागया चूका अज्ञान अंधार, तेसनु रूप अत अगला जिस वर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी
जसन जन्म सवहार बिन घर भगती सीगार करे नित जम्मे होए खुआर सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो जगह संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावै निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केल कट्टन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सच्यार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो दे मनहार पौड़ी तुद जे वड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा।

अवहट पटन में भिक्षा करे सो अवधूती से पुर चढ़े। बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत में रेखना रूप मोहल्ला पहला। सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास। चंद सूरज की पाए गंड तिस उदासी का पड़े ना कंध। बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत में रेखना रूप मोहल्ला पहला। तो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले। उपने बिंद न दे चरणा इस पाखंडी जरा न मरना। बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत में रेखना रूप मोहल्ला पहला। तो पैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल में रोपे थम। आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत समान। बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मोहल्ला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीव है जोत। तन पड़ाए क्या खाजे पुत। आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ। तूप शाम जे सम कर सह।

नानक चित अचेत है, चिंता बद्धा जाए, नदर करे दे आपनी, ता आपे लहे मिलाए पौड़ी, सेजन साते सदा सदा, जिन्नी गर्स पीता, गुरमुख सच्चा मानव से ससौदा कीता, सब कुछ कर ही माए है, वड़ भागी लीता, अंतर तृष्णा मर गई, हर गुण गा बीता, आपे मेल मलायन, आपे दे बुझाई, वाह वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला, वेल पंजाया कत उड़ाया, ताट कोट कर खुंब चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े, सुई तागा सीवे, क्यों पद पाटी सिवती सीपे, नारक जीवत जीवे, होए पुराना कपड़ पाटे, सुई तागा गंडे, माओ पख क्यों चल ले नाही, कड़ी मोद किश हंडे, कत पुराना होवे नाही, सीता कदे ना पाटे, नानक साहेब सचो सच्चा, तित्यर जापी जापे महला पहला, सच की ताती सच सब सार, तारत तसकी अपर अपार, सब दे सान रखा इलाए, गुण की थे के विच समाए, तेदा कुट्ठा होवे सेख, लोहू लब निकथा वेख, होए हलाल लगे हक जाए, नानक दार दीदार समाए, महला पहला, कामर कटारा बंकड़ा, बंके का असवार, गर्बना कीजे नानका, मत सिरे आवे पार पौड़ी, सो सत संगत शब्द मिले, जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे, जिन हर खर्च तन पल्ले, भगत सोन गुण गाम दे, गुरमत अचले, रतन विचार मन वसया, गुर के शब्द पले, आपे मेल मिलाएगा, आपे दे वड्याई। श्लोक महला तीजा, आसा अंदर सब को, होए निराशा होए, नानक जो मर जीवया, सहला आया सोए महला तीजा, ना किस आसा हथ है, क्यों निराशा होए, क्या करे ए बपड़ी, जा फुलाए सोए पौड़ी, त्रिग जीवन संसार, सच्चे नाम बेन, प्रवदाता दातार, नित्य एव तन, सास सास आराध्य, निर्मल सोए जान, अंतर्जामी अगम, रसना एक पान, रब रया सर्वत, नानक बल जाई,

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, पिरतैड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शैश पीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जितहो लाई तितहो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

हुक्मे सो हरख आनंद, हुक्मे जपे निरोधर गुरुमंत, हुक्मे आमण जान रखाए, नानक जा को भक्ति लाए पौड़ी। हौथ ठाडी

गाओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

तन सुतेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नानक तू लेना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन साधारिया चारे जागे चौ जुगी पंचायने आपे हुआ आपी ने आप साजियों

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया तर।

ले गगन मझारंग बेदियले चक्कर पुहंगा फेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरासा जाब कुंभक पर

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरसे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारसे ना परसे, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रगाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जाग तरह सो कहू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन मैं गह, जाग तरह न अलिया पाख है, पांचों इंद्री

पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जग नास्यो गोष्ठ करै, चौमुख दीवा जोत द्वार, परु अंत मूल विचकार, सर्व कला ले आपे रहे, मन मानक रत्ना मैं गोह, मस्तक पद्म द्वाले मणि, महे निरंजन तिर पवन तनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुल के चावर शंख कण गाजे, दल मलदे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाते तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरपौ निरवैर।

तुम दुष्ट तारे हरण के। नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे। हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रघाओ। जन्म जन्म के पूर चूक हम अबाए प्रसरण अगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हमरा खो वड़ पावक के। तुमरी संगत हर को ना उधरे हो प्रकीय पतत पवगे।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, सुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुमगी यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

साधु तूर करो नित मजन सब केलबख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निधान।

ओध लोभ खंड खंड कीने बिन सो मूड अवमान क्या गुण तेरे आख वखाना प्र अंतर जामी जान चरण कमल शरण सुख सागर।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अदकाई परसुआ गण उधारे पारस न परस फय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निखारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन घारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन विसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है हल्के सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लय मारे। राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

जियो जस नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निद हर घर घरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप अरे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तने रा

कोय, पूर है या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बीन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

तेरा नाम त्याय तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा, अंधा परम फूला मन मेरा रखाव। साद कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए, सो थोड़े दुख अगले दुखे दुख विखाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहिब सो साल आईये जिन कर देखा खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते पोग, वे योगी में विछड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लिख लखाया लिख दात जोत वड़ियाई। मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मान ताहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना रहाओ। ताज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइये ते भावड़ दुनिया आइये। सदकाया पट हंडाए फुरमायस बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। कर कुमन वाणी पाई पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू। मारू महला पहला कर पहला करणी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिगे, तौ गुण नाही अंत हरे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवे लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

परे उधरे जन नानक हर कृपा धारी उर तरे ओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध प्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंदराध करव्या शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरिया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रघाओ सुर नार गण गंधर्वे जप्यो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर घर नाम जपया हर घर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट तेतीस ते आयो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणतना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर ब्राह्मण पाया उरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर हर नाम निधान लय गुरमत हर पद पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लय छाए जिथे आप कट गलियां पीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सदगुरा मैं हर हर नाम दिरड़ाए मेरा माल पिता सुदबंध को मैं हर बिन अवर नाम आए रहाओ मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिला वे माए इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए जिन हर हर नाम न चेते हो से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जमे आवे जाए ओए जमदर बदे मारी है हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मुको मेले हो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सदगुर की शरणाए हर जीव आप दयाल होए जन नानक हर मेल आए मारू महला चौथा हौ पूंजी नाम दसाए दा ओ दसे हर तन रास हौ तिमिटों खन खनिए।

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सावास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखे हर मिले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत घर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईगे अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा विसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए साचा सोए सुख पाया फिर।

हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलया, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, रहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिसघी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आत अंत प्रभ अगम अगाही।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रव करण कारण एक रहाओ चेत मन में तस्यानप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्हीं नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुखे आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

ऐसा वास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लए गुर को बर जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा साचा रहचाख्या साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी जिन्नी नाम सारिया

दुख दर्द कलेश बिन सहे, जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े, बिखना पोहे ताहे, रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे, अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन, ऊच अगम अगाह, सिद्ध साधक देव मुंजा, वेद करे उचार, तेमर स्वामी सुख सहज पुंच, नहीं अंत पारा वार, अनक प्राशित मिटे खिन मह, हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन, कोड़दान इसनान, बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस, संतना की रास, बिसर नाही निमक।

क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, जागना जागन नीका, हर कीर्तन मैं जागना, लागना लागन नीका, गुर चरणी मन लागना, ए बिद तिसे परापते, जाके मस्तक भागना, कहो नानक तेस सब कुछ नीका, जो प्रभु की शरणागना, मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना, रहाओ तुद आपत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हिरदे वस, दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगस, दुरमत दूखत जावना, दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना, संत बेरा में थाव न कोई, अवर न सूझे जावना, मुए निर्गुण को कोई न रख, संता संग सुमावना, कहो नानक गोर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावना, मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन, सोन हर हर जप सा जीवना, अरहाव पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख न लागे, संतोख सदा तृप्तिवना, पहनना रख पद परमेसर, फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मध्य हरस, संत संत मै लीवना, बिन तागे बिन सूई आनी, मन हर भक्ति संग सीवना, मातिया हर रस में राते।